0: ಇದುವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರ. ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರಭಾತ್. 8:15 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: ಕುಡ್ ಕುಡ್ ದಾಸ್ ಬುಲಾತೆ ಥೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಲೈಟ್ ಪಂಖೆ ಚಾಲು ದೇಖ್ತೆ ಹಿ ವೋ ಸಬ್ ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಾನೆ ಲಗ್ತೆ ಥೆ
2: ಅರೆ ರಮುವಾ ಯೆ ಪಂಖಾ ಕಾ ಖುಲ್ಲಾ ಛೋಡಾ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಾ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾ ತೇರಾ ಬಾಪು ಭರೇಗಾ.
1: ಪರ್ ಆಜ್ ಉನ್ಹೇ ಸಬ್ ಪ್ಯಾರೇ ಲಾಲ್ ಬುಲಾತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಬ್ ಸೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಸೋಲರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಲಗವಾಯಾ ಹೈ ತಬ್ ಸೇ ಮೀಟರ್ ಕಿ ಸೂಯಿ ಭಿ ಚೈನ್ ಸೇ ಸೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಹುಕುಮ್ ಸಿಂಗ್ ಭಿ. ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮುಕ್ತ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಜ್ ಹಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕರೆ ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ .gov.in ಪರ್.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की. पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट. और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है. फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है. श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की. श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है. श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं. G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे. G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है. G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे. आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है. वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है. कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है. उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
5: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
7: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
5: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है इनमें हिमाचल प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो
8: एनटीए इज कमिटेड एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो
9: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है असम मेघालय बिहार केरलम माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ बिहार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी
10: धन्यवाद मुनीश देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात वार्ता आज पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद ए मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे
3: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
4: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
11: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya, and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance, and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics, and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshau Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
12: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
5: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagra style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
6: मेरा नाम पंकज जड़िया है.
13: A few days ago, I went to Ayodhya, where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made, and there are also beautiful table walks and displays which look very divine.
6: जो कि बहुत ही दिव्य लगता है.
5: In Ujjain, in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
14: My name is Priyanshu Singh. I am from Varanasi.
15: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
14: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
5: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
12: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
16: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump's present, Modi flags, seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, Peace Without Peace writes, the announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem. The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
12: Thank you, Tanvi.

0: strike, airstrike, and Operation Sindoor, abrogating Article 370, eradicating Naxalism, or fortifying internal security with over 12 accords in the Northeast. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Rangelands Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav cited India's desertification and land degradation atlas and said that around 29% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
1: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kulundu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailash Nathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency NTA has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
2: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete, secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting three militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defense Minister Rajnath Singh said India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strike, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defense production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
3: Nigam. G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
4: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
3: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक एक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक युवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में युवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था।
6: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही।

0: दी है।
1: ग्रोथ रेट हैज बीन वेरी गुड।
2: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
2: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।
7: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಸಹನ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ, ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಸಮಾಧಾನ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧ, ಇಂದು ರೈತರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ಎಎಲ್ ಜೊತೆ ಗತಿಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಿಳುವಳಿಕ ಒಪ್ಪಂದ. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಡದಿಯ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ. 8 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು, ಪಿವಿ ಮೋಹನ್, ಶಿವಣ್ಣ ಮಳವಳ್ಳಿ, ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ತಾವು 100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 46 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ, ರೈತರ ಹೊಲ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ರೈತರ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ರೈತರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ರೈತರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬಾರದು. ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಗತಿಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಶೋಧನಾ

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
2: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
4: दादी जी। अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
5: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
4: हाँ पूछो।
5: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
4: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
5: अच्छा।
4: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
5: अच्छा।
4: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
6: अच्छा।
4: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
5: मंगल पांडे।
4: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
6: अच्छा।
4: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: के बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
7: अरेस्ट करो!
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
10: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई और कर देगा।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Come, Bande Co, Tikona Mountahai, Durant, Hospital Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी,
9: तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
10: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
9: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
10: अच्छा माँ।
11: माँ माँ।
10: लो देवेंद्र भी आ गया।
11: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
9: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
10: ठीक है माँ।
11: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
10: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
11: ये देखो दीदी, ये मारा।
10: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
11: अरे ये मारा।
10: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
11: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
10: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
11: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
9: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
10: अच्छा माँ। कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
12: हमें अंदर आने दो।
10: अरे क्यों?
13: ए लड़की रास्ते से हट जा।
10: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
12: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
13: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
10: अरे
13: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
10: क्या हुआ? देखो जल्दी।
9: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
12: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
10: हाँ मेरी माँ को छोड़ दो।
12: ये चाकू देख रही है ना?
10: छोड़ दो।
9: मुझे मत मारो,
10: कुछ मत करो।
9: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
13: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
9: अरे मेरे पास छोड़ो,
10: मेरी माँ को छोड़ो।
12: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
13: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
9: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
10: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
10: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा, हाँ।
10: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
10: हेलो।
14: हाँ बेटा बोलो।
10: पापा।
14: हाँ।
10: पापा।
14: हाँ, बोलो बेटा।
10: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
14: कौन घुसा है?
10: माँ को बहुत मार रहे हैं।
14: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
10: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
10: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
7: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
15: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
9: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
16: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
15: देखो ना सबकी जान बच गई।
9: बहादुर है मेरी बच्ची।
7: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे।
17: मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
18: उमंग उमंग उमंग उमंग।
19: स्नेहितरे, इदुवरेगू प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯವಾಣಿ
20: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ನ್ಯಾಯವಾಣಿ. ಸಹಯೋಗ ನ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ.
21: ನ್ಯಾಯವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರಾದ ಮುನಿರಾಜಯ್ಯನ್. ಮುನಿರಾಜಯ್ಯನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ.
22: ನಮಸ್ತೆ.
21: ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್, ಏನೇನು ಅಂತ.
22: ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಮುಂಚೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡದೆ, ಕಾರಣ ತಿಳಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ನೀತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ್ ಏಕಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ
21: ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯನೂ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಏನು ಇತ್ಯಾದಿನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಕರಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಾರದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ ವಕೀಲರಾದ ಮುನಿರಾಜಯ್ಯನ್ ಅವರೇ. ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ.
20: ಇದುವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಣಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸಹಯೋಗ

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರಾಯಚೂರು ಕೇಂದ್ರ.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स लंदन में इस समय T20 विश्व कप महिला विश्व कप के तहत भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज या बैटर्स जिनको हम कहते हैं बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, सैफ अली वर्मा, स्मृति मंधना, दोनों ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। स्मृति मंधना ने पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था और भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत में मदद मिली थी। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, नीदरलैंड्स की कप्तान ने आज बेवेट डिलीड जो विकेटकीपर भी हैं उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक टारगेट को चेज करेंगी और उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, हम आपके विरुद्ध जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। नेपाल में जो क्वालिफायर्स खेला गया था महिला विश्व कप के लिए उसमें इन्होंने पहले किया आयरिस ज्वेलिंग जो 24 साल की हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं, 101 विकेट वो अब तक ले चुके हैं। ज्वेलिंग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड्स का ये पहला विश्व कप है, इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखना है भारत जैसी सशक्त टीम जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की चैंपियन है इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मंधना बाएं हाथ की, दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडाउन की तरफ लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है स्मृति मंधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक अतिरिक्त रन, तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से, वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, सैफ अली वर्मा और स्मृति

0: मंधाना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर उसे पुल किया था, शॉर्ट आर्म पुल, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच, गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया, स्विंग होने के लिए अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए, और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच, ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से, और 1 रन और भारत के खाते में जुड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट, जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बैन। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में 1 रन और जुड़ गया, 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया। भारत का स्कोर हो गया 5 और बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, ज्विलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ, 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका, और देखना है ज्विलिंग अपनी इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ज्विलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, हवा में अपना आर्म के साथ छोड़ी थी गेंद को, टप्पा खाने के बाद उछली थी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट किया था शैफ अली वर्मा ने 4 रन के लिए। 1 गेंद अब तक शैफ अली ने खेली है, उसमें चौके के साथ अपना खाता खुला है। भारत का स्कोर 9। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से इसे पुश किया था, तो कोई मौका नहीं लेना चाहती शैफ अली वर्मा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो बल्लेबाजी कर रही हैं पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा असरकारी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन लिहाजा वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए खेलना चाहती हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ। विश्वनाथ,
2: वेल गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Well, this is the first World Cup. They are the debutant Netherlands, and when the last game they played against Bangladesh, it was a bit of a close encounter. And today is a very busy day. 3 headers: India playing Netherlands, and you've got the other 2 games going on also. One, in fact, Bangladesh has lost to Australia by a mile, and South Africa and Pakistan make first ball is handsomely driven by Smriti Mandhana up to middle, no run. Well, it's a kind of a grouping that India has, that they got 2 major opponents here. One is of course South Africa and Australia. So it's not an easy group through. Ex-ball, she draws, mistimes, drags the ball up to wide-ish mid-on. Wants a run, it was there actually. I said they make it in the end comfortably. So none for 10. We are in just the second over. It's Seegers, she's bowling. And Heath Seegers, she opens in fact the batting for Netherlands, and she's got a sister also playing the same game, isn't it? It's quite amazing. Silver Seegers. Here is Heath Seegers. Up she comes now with her off spinners, and she's getting the ball around the over the wickets to Shefali. Comes in now short, and he hits it hard off the back foot. It's going down towards the extra cover fence. The ball should win the race as that ball runs away for 4.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Well, that was too friendly. It was short and wide and spinning away and was easily put away by Shefali Verma. So, but I feel this is the kind of game that you can improve your batting average at times. The Indians don't take Netherlands lightly. Sieges in. Just a couple of paces. Jonathan Bowles down the leg side and it's been worked away towards a whitish mid-on. Runs with the stroke for an easy single. And India move up to 15. Just to give you what happened with the toss, Netherlands won the toss and preferred to bat second. It was a bit surprised. I felt their weapon probably was the bowling. And it's such an inexperienced side. I'm sure we're going to talk a little bit more. Next ball is nicely tossed up. And a brilliant dive, and that can't get past her. This is running down towards the extra cover fence for four. When Smriti placed that cover drive, I think that's an absolutely very elegant offer to see that. She's a delight to watch when she plays that cover drive. And a beautiful time of the ball. And he played well against Pakistan the last game. And the Indians are not taking Netherlands so lightly. So India move up to 19, one ball to go in the second over after they've been sent in by Netherlands. If you just joined us, with Smriti on 8 and Shefali on 9. Last ball of the first over from Sieges coming in as she's going to ball right arm round the wickets, slower, and she has to reach for it and then she drives beautifully. It beats cover, an extra cover, that'll be another 4. Well, that sort of a pace and spin, I'm sure the Indians are going to enjoy the bowling of the Netherlands at the moment now. So Goswami, I think, you know, would you say winning the toss and batting second was the best option for Netherlands?
0: लगता है कि भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तो उनको लगा होगा ऐसा कि एक बार परखा जाए और कोई एक टारगेट जो बनाती है भारतीय टीम एक अगर मौका देती है तो क्या कुछ कर सकते हैं वो तो इस तरह का एक उनके दिमाग में रहा होगा कप्तान के और उन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का मौका दिया है और उन श्रोताओं के लिए कि आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच में महिला विश्व कप का ये मैच चल रहा है ज्वेलिंग आई है अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी बैट फुट पर गई मिड विकेट की तरफ गेंद को धीरे से प्लेस किया है एक ही रन मिल पाएगा शेफाली वर्मा का स्कोर हो गया इसके साथ ही डबल फिगर में 10 रन 5 गेंदों का सामना किया स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है हम आपको बहुत तेजी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में और एक बार फिर से ज्वेलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी बैक फुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया कोई मौका नहीं रन लेने का और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी के रनअप की ओर आ रही हैं स्मृति मानना शेफाली वर्मा यास्तिका भाटिया जेमिमा रॉड्रिक्स हरमनप्रीत कौर जो कप्तान हैं ऋचा घोष दीप्ति शर्मा श्रेयंका पाटिल श्री चरणी क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा इस समय भारतीय टीम में खेल रही हैं ज्वेलिंग एक बार फिर से दाएं हाथ से उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी बैक फुट पर गई ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ लेकिन फील्डिंग वहां पर हो गई है फील्डर खड़ी थी बहुत तेजी के साथ उन्होंने गेंद पर झपट्टा मारते हुए फील्ड किया लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो रन लेते हैं भारत का स्कोर इसके साथ ही हो गया 25 रन स्मृति का स्कोर है इस समय 13 रन और अब शेफाली वर्मा 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए ज्वेलिंग की अगली गेंद का हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए जा रही हैं शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से और धीरे से उसे प्लेस किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर हैं वहां पर एक ही रन मिलेगा और एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और शेफाली का स्कोर इसके साथ हो गया 11 रन स्मृति अब सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर हालांकि पहली बार नीदरलैंड्स को इस विश्व कप में मौका मिला है नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में चौथी टीम के रूप में उन्होंने क्वालिफाई किया था और उनकी कप्तान इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि वो इस विश्व कप में भारत जैसी सशक्त टीम के सामने जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की उनके सामने अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें ज्वेलिंग एक बार फिर से पांचवीं बार इस ओवर में आ रही हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी फिर से अपनी जगह पर खड़े होकर वाइडेस्ट मिड ऑन की पोजीशन की तरफ खेल दिया रन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता था और स्मृति मंधना जो कि भारत की बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है और इससे पहले पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ही शानदार अर्धशतक 68 रन उन्होंने बनाए थे। एक बार फिर से तैयार हो रही हैं ज्वेलिंग की अगली गेंद। ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में मिड ऑफ पे, वहां पर केप खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई सवाल नहीं उठा। तो इस समय ओवर समाप्त हो चुका है और भारत की टीम अभी भी कोई नुकसान उनको नहीं हुआ है, अच्छी तरह से खेल रही है। विश्वनाथ,
2: ये आई थिंक दे आर नॉट लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग, दे बॉल वेरी शॉर्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द विकेट, दे गो टू पिच द बॉल अप, लीड्स इज अ ग्राउंड वेयर इट्स गोइंग टू असिस्ट द फास्ट बॉलर्स, देयर विल बी समथिंग फॉर द बॉलर्स, पिच द बॉल अप एंड मेक द बॉल टू मूव अराउंड। But I tell you, June has been a significant month for sports lovers all across. We've seen the French Open getting ended, Wimbledon to start the end of the month, and the World Cup football in place, T20 Women's World Cup going on, and of course plenty of cricket in test matches, also England playing New Zealand. I tell you, it's an amazing month, isn't it? The schools are open now. It's going to be a change in bowling as Vander Warning, she's replaced Seager. Seager's first over was a little expensive. She was bowling very friendly, definitely. Smithy on 13, Shefali 11. She's the right-hander on strike, and it's none for 26 from 3. Up comes Vander Warning. A runs an early bowl, short, and she pulls away on the own turn out through square leg. Didn't time it the way she wanted to do, and that ball is running away down towards the square leg fence for 4.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Well, I like the delivery. Short ball climbing onto Shefali Verma, and boy, that was a very high bouncer, but she was never in control of the shot, but still gets 4 more runs. So Shefali now, she's got only 2 games to play, 1 or 5, and now she probably will get into an automatic mode. And the captain standing well back, D-lead. She's just 26 years of age, and I tell you, she's led the team by an example. She played well in the last game against Bangladesh. She got a half century. Here it is, 30 on the board. We are on the fourth over. The captain really standing well back to the pace of Vander Warning. Up she comes there, fairly long run-up for a fast bowls, and she goes back and cuts the ball into the ground towards backward point. No run. And it's no wicket for 30. So we're just looking at the last game that Netherlands played against Bangladesh. They played well. They took the game to the last over, though it was not an easy win. And at the same time, teams batting second have had comfortable chases, except the one that we saw yesterday between New Zealand and Sri Lanka. And Sri Lanka really pulled a surprise in winning the game against New Zealand. None for 30. Vander Warning. I'm very impressed with her. She comes and bowls fuller and went up to mid-on. And not with great timing and power behind it, and it goes straight to the fielder, there's Willing, and India remain at none for 30. And this is a very tough group. If you look at the Group B, they've got England, Scotland, West Indies, New Zealand, Ireland and Sri Lanka. Though I won't rate them very badly, but this is also a very tough group, the Group 1 that India is playing. I'm very impressed with Vander Warning. She's got some pace, she's got the ball to move around a little bit. Everything settles down. Here she is now running in. Passes the umpire bowl. Short and wide. She cuts Shefali. And race away towards the backward point fence for 4.
1: Ye laga aabha ka choka.
2: Well, that's the mistake she's doing. She's not pitching the ball up. Short and wide. And it'll get hammered away in the power play. Only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. And Netherlands, I think they're known for... football, as the orange clothing is very significant. They're playing the World Cup football to the men's team, and this is a big boost for the Netherlands women to get along with T20 cricket. Up she comes now in bowls, fuller driven, lifted in the air, over the top of it off, and it's gone one bounce into the fence for 4.
1: Ye laga aabha ka choka.
2: Well, beautifully timed. It was just pitched up, and she was on top of it. It was a kind of a friendly half volley, I would say, by all means. And Shefali Verma, the player of the match in the women's 50 over World Cup, and now everyone wants her to find some form. So, India racing away inside the power play, and I'm not sure whether it's the right call to bat second from the Netherlands' point of view. 3 boundaries in this over. One ball to go in the fourth. Warning bells. Oh, she tries to cut it away. And a bit of swing there. She was trying to glide it outside the off stump and missed it and went through to the keeper. So four of it's gone. India really going well. None for 42.
0: भारत का इस समय स्कोर काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जैसा कि श्रोताओं को जानकारी होगी कि 20 ओवर के मैच में 6 ओवर पहले जो फेंके जाते हैं वो पावर प्ले के रूप में जहां पर 9 खिलाड़ी विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ में 9 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर रहते हैं लेकिन उसके अलावा 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं और उसके बाद 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर और उसके अलावा शेष खिलाड़ी घेरे के अंदर इस समय 42 रन का स्कोर है भारतीय टीम का और उन एक कदम आगे बढ़े अगली गेंद थी ज्वेलिंग की और ड्राइव किया 4 रन के लिए
1: ये लगा आभा का चौका
0: भारत इस टूर्नामेंट में 4.1 ओवर का खेल हो चुका है और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही है और उन श्रोताओं की जानकारी अगर लेना चाहें तो हीदर सीजर्स जो टीम है इस समय खेल रही है हीदर सीजर्स पीबी मॉलकेनबोर बेबे डीलेड स्टीर कैलिस रॉबिन रिस्क फ्रेडरिक ओवरडिस्क आयरिश ज्वेलिन और मर्थ वेन डेन राड कैरोलिन लेंग सिल्वर सीजर्स इस बीच इस गेंद को धीरे से पुश किया था और पूरी तरह से फील्ड वहां पर सजी हुई है बहुत ही रक्षात्मक फील्डिंग जिसे कहते हैं कि हर स्ट्रोक पे नजर है नीदरलैंड्स के फील्डर्स की और वो पूरी तरह से इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत की टीम को रनों की बाढ़ बनाने से रोकें इस बीच गेंद बैकफुट पे गए और ड्राइव किया उसे बहुत तेजी के साथ 4 रन
1: ये लगा आभा का चौका
0: इस समय भारत का स्कोर हो गया 46 रन 4.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है इस ओवर में 2 चौके पहली गेंद पर और तीसरी गेंद पर लगे हैं और इस समय भारत धीरे धीरे प्रयास में है कि ये जो पावर प्ले है वहां पर उसका स्कोर कुछ इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले खिलाड़ी एक रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें इस बीच ज्वेलिंग की ये गेंद ओवर पिच गेंद थी ड्राइव किया था इस गेंद को ऑन साइड में ऑन ड्राइव बहुत तेजी के साथ जा रही है और बिल्कुल सीमा रेखा के पास गेंद को रोका और इस बीच बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला स्मृति का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 23 रन और 2 रन उन्होंने लिए 23 रन पर खेल रही है स्मृति और बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है लेकिन देख रहे हैं अंपायर के कहीं उनका जूता लग तो नहीं गया लेकिन अभी फिलहाल 48 रन 4.4 ओवर के खेल के बाद ज्वेलिंग मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और स्मृति इस समय खेल रही हैं 23 रन के स्कोर पर 16 गेंदों का सामना किया है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सैफ अली वर्मा जो अभी 23 रन उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है 10.29 की औसत से रन बन रहे हैं इस बीच ये अच्छी गेंद थी इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी कमर की ऊंचाई तक उछली सुरक्षात्मक तरीके से उसे खेल दिया और एक डॉट बॉल यानी कोई भी रन इस गेंद पर नहीं बना है भारत की स्मृति ईरानी को 3 चौके और चाहिए और T20 में उनके 600 रन इस बीच में ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार धीरे से पुश किया था कवर्स की तरफ लेकिन फील्डर हमारे स्टेटिशियन मनोज कुमार ने बताया कि भारत अपना 222वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है भारत के अभी तक 122 मैच जीते हैं और 93 मैच हारी है जबकि 4 मैच बारिश के कारण या अन्य कारण से रद्द हुए हैं विश्वनाथ
2: Well, the amount of T20s are getting played, I feel, you know, maybe after 10 years, you could see each of these cricketers playing 300, 400 T20s. And I'm sure 10 years before we were all talking, you know, if someone hits someone placed 100 test matches, that's a, you know, that's a, something, a monumental feat. Now it's all gone. Maybe after 20 years' time, we'll see team, each individual member playing 300, 400 T20s. And that's how the world is moving on. 222 T20 internationals for India till now, and they won 122 of them, lost 93, and 4 produced no results. So this Dutch team has been quite amazing and interesting because they came the hard way. Change in bowling now. She's going to bowl, and Van den Raad, she's replacing Van der Warning. So, and she's going to bowl to Shefali Verma. Round the wickets, right on Aaron Dolls. And she gets a top. It's in the air. What's going to happen now? We're going to see. No, it falls safe. And the fielder over there, Carolyn D. Lee, she was running behind, but a couple of runs, I believe, to Shefali Verma. She goes up to 25 from 13. I was just looking at the road to Netherlands, you know, this World Cup. It was quite interesting because they contested the European qualifier in May and then the Emerging Nations Trophy in 25 and the World Cup qualifier in Jan 26. So when, and we're just talking about Caroline de Leet, amazing cricketer. She's a doctor by profession and she dropped that profession now. I was very serious about representing Netherlands in World Cup. Van der Rand bowls on the wicket, Fuller, and has been played firmly up to mid wicket. I think she was surprised by the full toss, which came just above the knee roll for Shefali Verma. And she's not been in great form of late, and this is one of the good matches that probably she can get to a good score. 25 from 14 deliveries. India's 50s up in just the sixth over. The racing away now for Vincent in. Next ball is down the leg side. Wraps her on the pan. The keeper fails to collect that. They'll run a leg by, if I'm not wrong. First extra of this game. And at this speed of 108.1 kilometres, not bad for any, you know, developing fast bowler. 51 on the board. 5.3 overs gone. This is the last over before the field spreads. And if you look at the restrictions in the power play, only two fielders are allowed outside the circle. So that's what the current state is. India, well, they've got a good foundation now thanks to these two openers, left and right combination. And now for the left-handed, you know, Mandana, she's going to bowl over the wickets. Campson bowls. Oh, that was too far, wide down the leg side. No leg by. Correction, another wide. And it's 52 for now, as we are in the sixth over. But I feel, if you look at the World Cup here, and I think most of the games have been won chasing. And it's not easy to chase, I feel, you know, when you look at something at 180, 190, even 200 above. No centurions in the World Cup so far. Next ball again down the leg side. She's not getting a line right. And probably she should bowl round the wickets to the left-handed Smriti Mandana. That would be more ideal. It's a long over, five runs off it, three extras and two of a top edge. Wender Red, she's got a very high arm action and pretty tall, I would mean, by all means. And I was just looking at the Netherlands lineup, Heath Seegers and for Mullenbor, and then the captain Dealey. Next ball again down the leg. So it's a two wide at Delaware. I tell you, three wides in a row, and that certainly wouldn't impress the captain. Now, captain now comes and has a word. I think she's asking her to bowl around the wicket. That's more sensible. And she's got three legal deliveries left in this over. Long over indeed, frustration. And now she tells the umpire she's going to bowl around the wicket. It'll be more sensible. But she's able to get the ball wobble a bit. The ball is swinging, no doubt on that. And that's the line to bowl. Pitch the ball up and let the ball do the talking in these tracks in Leeds. Well, India, I probably will say they're on top of this game so far. Next ball, all driven beautifully. And I tell you again, that one swung. It swung into the left-handed Smriti Mandana, who drove it, and it went up towards a straightish mid-on, no run. So 54 for no less. And Wender ran in her first over, none for five from the first four deliveries. She's very impressive. I feel she's been the best of the bowlers so far. Next ball, again a wide one. This one is two for wide, outside the off stump. She saw the batter coming down, charging down, then she shifted her angle, and that led to the wide. And right now the Indians are certainly enjoying this game. And I was just looking at fast centuries, you know. Doughton from the West Indians, she has scored a 38 ball 100 against South Africa in 2010, hit 7 fours and 9 sixes. Next ball again down the leg side, wide call by the umpire. I tell you, this is a long over. Frustration for the bowler, frustration for the captain. She's not getting a rare right. She's spraying the ball in all directions. We've got 5 wides in this over so far. 5 wides and 1 leg by, 7 runs. I'm not sure if she's got some fitness problem or not. And there's a discussion on between the Dutch women trying to sound out how they can end this over. And the captain D. Lee now in a customary wicket-keeping position now. Here is Van der Esch. She bowls left arm, or rather right arm around the wickets, again down the leg side. I'll tell you, oh my tall, I'm going to tell you that. It's swinging, and it's swinging not to the likes of to the bowler. It's swinging the wrong way. That would have been a nice line for to a right-hander. And now there's a discussion again going on between the captain. She's run all the way to the bowler's...

0: Calling Mark, and it probably she has to hold cross same, you know, to control that swing. I think, you know, she's got a nice high arm action. She's delivering it beautifully, but she's not getting her direction right now. Pressure on the bowler. It's a long over. Four deliveries have been six wides. Wander Radbolt short, pulls her away on the onside after mid-wicket. There's a fielder over there, and just a single. And that'll be relief for the bowler, isn't it? Absolute relief. Nine runs on this service. Should be the most lengthiest over in Women's World Cup, if I'm not wrong. Six wides. Quite extraordinary. And we've got a colourful scorecard here. And we'll just look at the scorecard now. It's 58 for Nolas. And Brenda Rad, I'm sure she'll be highly frustrated with the way things are going on at the moment. Mandana 24, Shafali 25. And Indians have raced to a lovely start. One ball to go in the power play. Right arm over, she bowls now. And it's pushed away on the on side. She'll get a single, not more than that. Long over is finally ended. Relief for the bowler. And six overs gone. No wicket for 59.
1: नीदरलैंड्स इस समय में थोड़ी सी परेशान क्योंकि उनकी गेंदबाज वैंडी राड ने एक लंबा ओवर फेंका और लगभग दो ओवर जितना एक ओवर हो गया कितनी वाइड फेंके गए यशवंत चार्ड हमारे स्कोरर बताएंगे और हमारे स्टैट्स गुरु जो कि रनों का लेखा जोखा और रिकॉर्ड्स के बारे में मनोज कुमार हमारे साथ हैं इस समय इस कमेंट्री में और मनोज कुमार ने बताया कि नीदरलैंड अपना 112वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है नीदरलैंड ने अभी तक 52 मैच जीते हैं 55 मैच हारे जबकि चार मैच खराब मौसम के कारण अनिर्णित रहे यानी उनका कोई परिणाम नहीं हुआ इस समय नीदरलैंड के सामने एक चुनौती है भारत के जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का जलवा लोग देख चुके हैं और इस समय इस बात का है कि ये T20 महिला विश्व कप का 10वां संस्करण है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम के रूप में काफी आगे रही है और ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक बार जीता है और एक बार इंग्लैंड एक बार न्यूजीलैंड एक बार वेस्ट इंडीज को ये T20 विश्व कप जीतने का अवसर मिला है इस समय लीड्स में खेला जा रहा है मैच भारत और नीदरलैंड्स के बीच में और भारत की टीम जो कि मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई छह ओवर्स का खेल हो चुका है 59 रन पावर प्ले में भारतीय बैटर्स ने बनाए हैं स्मृति मानना और शेफाली वर्मा दोनों ही बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं विश्व क्रिकेट में और खास तौर से जहां तक स्मृति मंधाना का सवाल है स्मृति मंधाना भारत की सबसे सशक्त बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट छवि लेकर वो उतरी हैं और बहुत ही मजबूती के साथ वो अपना गेम खेलती हैं और उन श्रोताओं के लिए एक और जानकारी कि 2026 की टाइम मैगजीन में स्मृति मंधाना को सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है और इस सूची में रोनाल्डो और मेसी जैसे ग्रेट फुटबॉलर्स हैं और अल्कारेज जैसे टेनिस के सितारे हैं वहाँ स्मृति मंधाना को टाइम्स मैगजीन में 100 सशक्त और सबसे बेहतरीन लोगों में माना है एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बेहतरीन क्रिकेट के लिए जाना जाता है और अब देखना है कि गेंदबाजी में कोई परिवर्तन हुआ है और देखना है सीजर्स एस सीजर्स आई हैं गेंद करने के लिए और भारत का स्कोर इस समय 6 ओवर की समाप्ति पर 59 रन रन रेट का जहां तक सवाल है 9.83 के और ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी और धीरे से इसे ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की तरफ और इससे पहले की फील्ड की जाती गेंद एक रन और भारतीय बैटर्स ने अपने खाते में जोड़ा है सैफ अली वर्मा का स्कोर इस समय बढ़ के हो गया है इंडिया और नीदरलैंड के इस बीच में 9.83 की रन रेट से जो फेज स्कोर है 1-6 के बीच में 59 रन बना है श्रोताओं की जानकारी के लिए जो आंकड़ेबाजी में थोड़ा बहुत शौक रखते हैं इस समय 60 रन भारत के खाते में जुड़ चुके हैं और सीजर्स जो कि लेग ब्रेक गेंदबाजी करती हैं और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर तीर गेंद को घुमा दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका.
0: But she got a very unusual action, isn't it? She's got a very fast action.
1: Yeah.
0: And it makes you believe that ball is going to come faster, but it's not.
1: Ji. बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को स्वीप किया था स्मृति ने और चार रन जुटाए थे. और अब देखना है कि अपनी अगली गेंद पर किस तरह की विविधता ला पाती है. सीजर से समय एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को कट किया था और गली की पोजीशन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. कोई रन लेने का मौका नहीं मिला. स्मृति खेल रही है 28 पर 27 पर खेल रही है. उनका साथ देते हुए शैफाली वर्मा बाएं हाथ और दाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन या जो साझेदारी बेहतरीन हो चुकी है. 64 रन की साझेदारी दोनों बैटर्स के बीच में हो चुकी है. यही गेंद अच्छी गेंद थी. इस बार गेंद को धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडॉन की तरफ और इससे पहले कि गेंद फील्ड की जाती है एक रन और भारत के खाते में जोड़ा. एक रन जुड़ा है स्मृति के खाते में. स्मृति 29 रन 23 गेंदों का सामना करने के बाद शैफाली वर्मा 27 रन पर खेल रही हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद. सीजर्स ने इस ओवर में बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं किया है लेकिन जिस तरह से पहली बार विश्व कप में ये T20 विश्व कप में टीम खेल रही है देखना है कितना प्रदर्शन कर पाती है. इस बीच अंदर की तरफ आती हुई गुगली गेंद थी उनकी और धीरे से फील्डिंग थोड़ी सी मिस हुई और कट किया था गेंद को वाइड गली की पोजीशन पर गेंद को फील्ड कर लिया. 66 रन बगैर किसी नुकसान के ये सातवां ओवर चल रहा है. आखिरी गेंद और फेंकी जाएगी. इस ओवर में अब तक 7 रन लिए हैं भारतीय बैटर्स ने और देखना है कि अब स्मृति मंधाना जो इस समय स्ट्राइक पर हैं अगली गेंद पर क्या ट्रीटमेंट देती है. ये गेंद अच्छी गेंद थी ड्राइव किया था उसने मिडाउन की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद को फील्ड किया एक रन और 7 ओवर की समाप्ति पर 67 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के.
0: Well, I'm very impressed with Seegers, the leg spin bowler. I think she had a very good first over, no doubt on that. And she bowled so well. And she's played 78 T20 games. She's got 62 wickets with a leg break, so it's quite interesting, Silver Seegers. And right now, India on a roll in this game against the Netherlands.
3: Akashavani, iga prakatane nantara rashtriya vartegalu, Akashavani Bengaluru kendradinda.
4: ಕೇಳುಗರೆ, ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:50
5: ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರ 7:35 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ
4: ಕಾಲ 6:50 ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲೋ ಕೃಷಿರಂಗ.
6: ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹಲೋ ಕೃಷಿರಂಗ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ

0: अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी, बहुत आगे निकल चुकी थी। स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था, बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया, कवर्स की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है। अब जाके गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक एक रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रनआउट करने के लिए, शैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची है। 32 गेंदों का सामना किया है, 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय। स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं, जो पहले आगे थी अब शैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं। लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं, इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, गेंद को ड्राइव किया था वाइड मिडऑन की तरफ, एक रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन। 28 गेंदों का सामना किया है स्मृति मंधाना ने, और शैफाली खेल रही है इस समय 48 के स्कोर पर। 2 रन अगर वो और बना लेती हैं तो ये एक अर्धशतक उनको एक नई ऊर्जा भी देगा। इस बीच ये गेंद ऑप्शन के काफी बाहर थी, ड्राइव किया इसे मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन ही मिलेगा और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुंचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के।
1: So 96 from 10 overs. India really in firm control of this game in the first half, and 200 probably I feel could be there. We're just talking about Netherlands as a country, a very small country with 1.8 crore population, and Dutch is the language, which got a bit of a German mix into that. And they all these years, their first loves being football. I keep saying about that, but these people have done something a little different. The men's team also does a good job in cricket, so it's just a question of time before we see them play international ODIs and test matches. Long way to go. And Manoj asked, statistician comes with some kind of a record to keep us heavily engaged. Highest score in power play for India in World Cup, 59 in this game at Leeds, 59 for 3 versus Australia in Cape Town in 2023 semi-final, 54 for 2 versus Bangladesh in Perth 20, and 51 for no loss against Bangladesh in Bengaluru 2016. Wender Rad bowls beautifully driven, beats a fielder at cover, diving save by Frederick. And I tell you, it was a wonderful save indeed, and appreciated by the whole team. Was it a catch? I'm not sure whether it carried or not, but we'll just pick it up. And Shefali has got to a 50. That's what everyone wanted. The whole country has been chasing about Shefali's form. And finally, she found some form today. 50 from 34. And acknowledged by her batting partner, Smriti Mandana. It was driven officially. I tell you, that was a catch. That'll go in as a dropped effort. And it was in the air, and unfortunately she couldn't grab it with both hands. Frederick was the fielder, and she races her bat. Shefali, 50, not out. So India is going on well now, and they are 97. And Shefali's runs predominantly have come on the offside, 28 of them, and balance on the onside. So that's been the mix. Wendin Rad had a long over. She is in her second over. None for 11 from 1.1. A worried looking captain standing behind the stumps. His next ball, Shefali comes and lifts it high over long on. This is running down towards the fence. No, it won't go for 4. Misfield there, and she recovers well enough. And they settle for a single. So Smriti on 34 from 29. And Shefali 50 from 34. 98 on the board, 11th over. And that strike rate of Shefali looks very healthy. 147 is the strike rate of her. And we don't see the centurion so far, right, in this World Cup? I think so. We don't have a centurion in this World Cup. Wendin Rad. We'll give you bowling analysis also, along with the extras they have conceded in a while. Shefali with high back lift now faces the next ball. Lowing the wicket, she bowls. She beats him. Oh, I tell you, that is a great delivery. I don't know how it missed the outside edge of the bat. That came from a blind spot. Beautifully bowled by Wendin Rad. And it was not far away from the edge. It was an amazing angle. She's comprehensively beaten all ends up. That is a beauty, I tell you. One of the finest deliveries of this game so far. And that's been done by Vandenbrand. Up she comes now, round the wickets and bowls, short. She pulls away, wide of mid-on. This is running down towards the fence. And one go for four. There's a fielder there patrolling. And a whitish mid-on sends in the return. Was it the 100 is up? Not sure. But Shefali's 51 from 36 with the help of 9 fours. No sixes in this game so far. In fact, the last game that Netherlands played against Bangladesh, there was no six in that from the Bangladesh side. From Netherlands side. It was a closely contested game. And we've seen some surprises happening. Australia field is a pretty strong thing. Next ball. She comes down the track. Shefali hits it high. It gets a thick outside edge and it's running down towards deep backward point. Just a single. The 100 is up. And the 100 is a fine opening partnership for the first wicket. Undefeated till now. Smithy Mandano 35 from 30. And Shefali's been the dominant partner. 51 from 36. 10.5 overs. One to go. It's been a good over so far. Four came from the first five deliveries. Shefali just turning an inch outside the batting crease now. 500 inside the second. Next ball, she gets one. Pitched up, driven beautifully between cover and mid-off. This will race away for four.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: The 265 boundaries in this World Cup so far. We all thought that would end up as a good error. Four came from the first five deliveries, and then the last one was pitched up and driven handsomely through the mid-off and cover fence for four. So India really playing well. They're in a very strong position. It won't be easy for the Dutch girls to come and chase anything in excess of 180. And there's something there for good fast bowlers. The Netherlands team has never found the rhythm up. We'll give you the bowling analysis in a while, as I keep saying. And the most busiest month for all sports lads all across the globe. It's been a month to keep your ears engaged with radio. So only we'll be bringing all the matches of the Indian games of this T20 World Cup played in England. And the proceedings so far, Goswami, has been extremely good for India.
3: जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय बैटर्स यहाँ पर अपना हुनर दिखा रहे हैं और शेफ अली वर्मा, जिनको काफी दिनों से इंतजार था, ये गेंद, अगली गेंद, नया ओवर का पहला गेंद और उठा दिया है इसे एक टप्पे के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
3: इस समय भारत का स्कोर 108 रन, बगैर किसी नुकसान के। एक शतकीय साझेदारी दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स ने की है, स्मृति मंधाना और शेफ अली वर्मा। बहुत मजबूत इरादों के साथ खेल रहे हैं। सीगर से एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उठा दिया है गेंद को, पहले टप्पे के साथ गेंद, देखना है जाए, बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। छह रन का इशारा अंपायर का।
2: ये लगा आभा का छक्का।
3: भारत का स्कोर इस समय 114 रन, बगैर किसी नुकसान के। जिस तरह से गेंद को उठा के बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया था उन्होंने, एकदम उछाल कर मारा था और गेंद हवा से बतियाते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए गई थी। इस बार ये गेंद एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया से कवर की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर, उसने गेंद को फील्ड कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस समय भारत का स्कोर बढ़कर हो गया 115 रन। 11.3 ओवर का खेल इस समय पूरा हुआ है और रन रेट 10 रन प्रति ओवर की। इस तरह में बहुत ही मजबूत रगड़े के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है और कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है। शेफ अली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं। जिस तरह से गेंद को फ्लाइट किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है। सैफ अली वर्मा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रही थी और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया सीगर्स की गेंद पर, 55 रन बनाए 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है। मनोज कुमार हमारे स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं कुल मिलाकर 33वां T20 15 का वह मैच है, 33वां मैच है जिसमें इन्होंने ये विश्व कप में अर्धशतक जमाने का पहली बार अवसर पाया है। मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं। तो भारत को ये पहली विफलता कह सकते हैं भारत के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सैफ अली वर्मा खेल रही थी लेकिन एक गेंद पर उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को हवा में उछाला था और बिल्कुल सीमा रेखा के पास जाकर गेंद पहुंची थी और ज्वेलिंग वहां पर खड़ी थी। सीजर्स को एक सफलता मिली इस अगली गेंद, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया उसे और बेहतरीन तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभाका चौका।
3: 15 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं लेकिन जो सुखद बात है वो ये है कि इसमें नीदरलैंड को सफलता एक मिली है विकेट लेने की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंदबाज हर्ष बीसी गेंद को ड्राइव किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। 119 रन अभी भी स्कोर है और जेमिमा रॉड्रिग्स इस समय आई हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक अमेरिकन गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, ज्वेलिंग ही खड़ी थी, ज्वेलिंग ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन तब तक भारत के पास मौका था एक रन लेने का। 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर।
1: Well, I was just looking at the celebrations after the fall of Sheff Ali's former wicket. Every Dutch girl, they got absolutely excited seeing the exit of Sheff Ali and they were very happy because they got the first breakthrough. But I'm sure when the Netherlands team hits back to their home country, I'm sure they're going to remember this experience for a long time. And we're going to have the bowling analysis, I keep saying, which I missed in the last few minutes. Zwelling, 3 overs for 22, Sieges, 2 overs for 26, and she got a wicket too in the last over. Warning, 2 overs 25, Van der Raad, 2 overs for 16, and Nylander, 2 overs, none for 16. One wicket taker so far, and now change in bowling. We're going to see another leg spin bowler in action. She bowled 1 over before this, and I was surprised that she was taken away. It is Silver Sieges, she can bowl. Around the wicket, over the wicket with a round arm action, short, climbs on to the batswoman and it's pulled away down to its deep score. Like a juggle with the ball, in fact, by Van der Wonning and finally she sends the return back to the wicket keeper. 1 for 122 from 12.1 overs and India heading towards a massive score. I think she had a nasty bounce coming up because of the, there was a hole dug over there, maybe a yard or two in front of her, and it just bounced on her. And luckily, it was a nasty one. So Jemima, she's coming now, face the first ball. She gets a thick outside edge and trying to work the ball on the offside, daps it in front of backward square, no run. And India remain at 1 for 122. Mandana 47 from 34, and Jemima 6 from 3. And we've seen a large contingent of Indian followers and a lot of followers from the Netherlands too. Sieges with a round arm action comes and bowls and it's worked away on the onside and they probably will settle for a single, not more than that. I feel Sieges has been the best of these bowlers in this Dutch side and it's very tough to read her action, isn't it? When I look at someone like the other spinner which is Heath Sieges, she reminds me of Paul Adams from South Africa. She's got that kind of an action. So I'm sure with a lot of data and video available on the Indian team, the think tank team would have done a lot of work in studying their action and playing them. But some of the action's very tough to read as Malinga, isn't it? With that slinging action. And you see a lot of this coming up in the IPL game. Next ball, short, and she pulls it away on the onside down towards deep mid-wicket. Just a single, Mandana up to 48 from 35. It's 1 for 124. I probably felt Richa Ghosh should have been sent in now because she's another dominating, you know, right-hander. And I would love to see her, you know, she can score this one so quickly. She's a powerful lady indeed. And a very strong match winner for many, many matches for India. Next one, short, hammered away on the onside out towards deep mid-wicket. And it's one of those irritating pace for any batter to battle. So they're just coming on to you very slowly, half-crackers, and you find it very tough to hit it or smash it to any part of the ground. And so it pushes India up to 125, a run rate almost touching 10 and over. Well, they're doing well now. So we're just looking at the centurion. There's been one centurion in this game. 1 for 120. Next ball, Smithy comes down, gets it high over extra cover. This is running down towards the fence. Will it go for four? And, oh, that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure. And she gets to her 15 indeed. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35th 50. Manoj Kumar Sethasachin is bang on. 39 is gone. 1 for 127.
3: स्मृति रानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो काफी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहां किसी भी पल परिस्थितियां बदल जाती हैं शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफी होती है और इस तरह शैफ अली ने अर्धशतक जमाया भारती के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर स्मृति खेल रही है 50 पर जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 8 रन के स्कोर पर 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही है दाएं हाथ की इनकी गेंद स्टंप के बाहर गेंद को कट किया था कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही है स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया इस 20 गेंद थोड़ी हवा में थी मिड ऑन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को स्मृति का स्कोर 50 रन अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट हमारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है हवा में थी गेंद फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है दर्शक क्षमता काफी बड़ी संख्या में लोग और यहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद गेंद को लपेट के मारा है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया 132 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी और इस बीच गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी और अब जाके गेंद को फील्ड किया एक ही रन मिलेगा उनको स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है विश्वनाथ
1: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
3: Over disc ka ye aakhri gend thi unke shot off line gend teer gend ko mara hai boundary deep mid wicket boundary ke bahar 4 run ke liye.
2: Ye laga abha ka chauka.
3: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर विश्वनाथ
1: Well, I think, you know, if they don't hit 200 in this game, I'll be disappointed. So I'm sure they're just scoring at almost 10 an hour. And it's one of those games where you probably, as a batter, if you're not found form, you can find form because some of the bowling effort from Netherlands has been too friendly. And bowled a lot of half crackers, the spinners, and the fast bowlers unfortunately couldn't find the rhythm, and it's been so far India's way, and I think there's a break on going on actually as such, and if you just switched on your radio sets, what's the reason here? Netherlands won the toss and they preferred to bat second, and there the openers have got half century, and Mandana continues a good form where she left against Pakistan. And the 50-50 World Cup champions now will find a great opportunity to break the jinx and then take over this World Cup. It's not so easy, but I think, you know, it's another World Cup era. I feel three or four teams are very strong in contention, including, I probably will say, England, because England are playing the home soil. Then we've got Australia. Of course, India is also a strong contender. And on the other side, if you look at, we've not seen much surprises this World Cup in terms of lesser-known opponents beating higher-ranked teams. Though Bangladesh probably had a bit of a tough time against the Netherlands in the first game on last Sunday. But I think Netherlands, I see a lot of promise in this Netherlands side. They've got some good, serious talent. And just to tell you about this, Dutch girls, you know, when they were playing the tri-series a couple of months before, most of them are flying in and out of Netherlands to finish their exams, so which is quite extraordinary, isn't it? And the love for the game continues, no doubts. So in the last game against Bangladesh, their first World Cup match, they scored 139 for 8, and Bangladesh chased in the last over, 19.1 overs. But D lead was wonderful to watch. 50 runs, he got a half century of 45. The wicketkeeper batter, 26 years of age. Very promising player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland, the Dutch women were flying in and out of the subcontinent to finish their exam. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline D. Lange, I said about her, she's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe, and she skipped it, and she's continuing on with their orange, attire to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that, and I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, that T20 is a beautiful marketing tool, and for lesser-known countries to endorse the game. And it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
3: विश्वनाथ इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है सर्वाधिक बार ऐसे छह बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छह बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है जबकि इंग्लैंड ने 2009 में जो कि इसका पहला संस्करण था उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था कलाइयों के सहारे से बहुत तेजी के साथ नहीं गई थी गेंद एक रन और स्मृति मन ने ले लिया 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74 तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही हैं शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी उन्होंने गेंद को फील्ड किया थ्रो किया विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है बबेट डी लीट, नीदरलैंड्स के कप्तान है, जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था, दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का। इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था, ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
3: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन, भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। एक कदम आगे बढ़ी थी और बेहतरीन तरीके से प्रहार करते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था। सीजर्स की अगली गेंद एक बार फिर से एक कदम आगे निकली और गेंद हवा में है, बहुत तेजी के साथ जा रही है और अब जाके बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन का इशारा अंपायर की तरफ से।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: And the extra golf in a fielder on the fence. I think it's a big mistake to have mid-off inside the circle because she's down the track freeing her arms and gets her right foot away and then she lifts it in the air with the ease for fours and sixes.
3: जिस तरह से भारत की पारी बढ़ती जा रही है आगे, एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है, चार रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
3: भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन, एक विकेट के नुकसान पर। सीजर्स की गेंद को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज दोनों बीच मैदान पर खेल रहे हैं, रोड्रिक्स और स्मृति मंधाना, बहुत तेजी के साथ रन बन रहे हैं। 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सीजर्स आ रहे हैं, उनकी गेंद ओवर पिच गेंद थी, गेंद को डीप विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया है चार रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
3: चार चौके इस ओवर में विश्वनाथ लगे हैं भारतीय टीम की तरफ से।
1: Four boundaries in a row is very expensive. I think that's the most expensive I've seen in this game so far. So, see the Netherlands bowling has been taken apart by these Indian batters, and 200 is looks. Very much on the cards now, and very expensive by all means. But some of the deliveries I've seen bowled by Netherlands have been too, you know, probably below par, I would say, which even the Indian batters wouldn't have faced that kind of delivery in the net practice session. And I'm sure Netherlands, as a team, are going to learn this game quickly, the nuances of the game. And as I keep saying, T20 is one of the best, you know, the first step in the ladder. By the time, maybe 10 years from now, the prominent play test matches. Short start off a new era. It's been played by Jamima off the back foot, cutting away on the offside for a single, and brings a left-handed Mandana on strike. Well, she's been very fluent today, and I really enjoyed seeing her play those shots on the offside, particularly in that cover area. She's an absolute wonder to watch indeed. The last year was pretty expensive indeed, Mandana. Well, 603 boundaries in a T20 career. That's quite amazing. 156 for one. We are in the 16th over. Mandana 69 from 43. And now Netherlands, some have to find and get through their overs quickly. At the same time, contain them to maybe less than 200. First ball. Next ball, slower. I tell you, very slow indeed. And Mandana came charging down the track, had to adjust to the pace of the ball and ended up playing up to short cover. Extraordinary action indeed from D. Lange. Probably she's the replica of someone like... next ball is hit in the air, high over, long off. What's going to happen now? It's gone one bounce into the fence for four. Again, the mistake. One bounce for four.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Well, they should have the long off on the boundary. The rule for this women's T20 encounter is there can be only four fielders allowed outside the 30-yard circle, unlike the men's in a T20 where they're allowed even five. So that's a bit of a handicap indeed. And you go very expensive at times. 160 for once. Smriti Mandana into the 70s. 73 of 45. Next ball is down the track and whacks it away on the onside out towards mid-wicket. One bounce to Heath Seegers. A deep mid-wicket. Cinch and a flat return. And that takes Mandana up to 74 from 46. India 161 for one. Might be wondering why they send India first to bat after winning the toss. And they probably can reach around about 220 with some big hitters to come, including the captain and Richa Ghosh to come. Next ball is swept away hard and down towards deep square. A single results and 162 for one. We are in the 16th over, one ball to go. And then after this, four more overs to come. Vandana, she's playing beautifully at the moment. 74 from 46 and finding a form where she left against Pakistan. The last ball of the over from Dee Lange. Right among the balls. She's down the track, hits it. She's got a top edge there. She's going high in the sky and will take it indeed. Second Indian wicket is down. Celebration in the Dutch camp. I'm sure they're celebrating this wicket so well. So Mandana gone, caught at mid-off and off the bowling of Dee Lange. And India lose the second wicket. Both the openers are gone. It's 2 for 162 from 16 overs. I'm sure every Dutch girl out of the centre, they all come to a huddle and hugging each other. And it was very well taken indeed at mid-off, and celebrations in the Dutch camp. They know the importance of the wicket. Dee Lange is absolutely delighted. So Mandana is gone finally for 74. Caught by Zwilling. It was the second catch, isn't it, for Zwilling, isn't it? And off the bowling of Dee Lange, and India are two down after 16 overs.
3: भारत को एक झटका लगा है, दूसरा विकेट भारत का यहाँ पर गिरा है. स्मृति मंधाना जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, मंधाना ने 74 रन का बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है. हालांकि उम्मीद ये थी कि वो एक बड़ा स्कोर आज करेंगी और अपनी पहले की पारी में जितने भी शतक लगाए हैं उनमें एक शतक की वृद्धि करेंगी. लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी परिदृश्य बदल जाता है. पलक झपकने के साथ ही कई नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं और पुराने ध्वस्त हो जाते हैं. अनिश्चितताओं के आंगन में ये खेली. गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन देखना है गेंद बैट से लगी है नहीं, और ये आउट दे दिया उन्होंने. बैन गेंद उनके बल्ले के कहीं बाहरी किनारे से छूते हुए विकेट कीपर के पास गई थी और भारत को ये एक झटका. जेमिमा रॉड्रिक्स 12 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन के स्कोर पर विकेट के पीछे पकड़ी गई, कैच आउट, आउट हुए. दूसरा विकेट भारत का 162 रन के स्कोर पर, और जिस तरह से गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी, स्वीप करना चाह रही थी, गेंद उनके ग्लव्स के पास से लगी और विकेट कीपर जो कि कप्तान भी हैं बबेट डी लीड, उन्होंने लुढ़कते हुए एक शानदार कैच लिया और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का को जाहिर किया यहां पर. और भारत का स्कोर इस समय 162 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. जेमिमा रॉड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे.
1: यू लुक एट द सेलिब्रेशंस ऑफ द डच गर्ल्स, अमेजिंग इज़न्ट इट. दे आर सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस गेम. दे रियली एंजॉयिंग दिस वर्ल्ड कप एज अ टीम टुगेदर. एंड व्हेनेवर दे गेट अ विकेट, यू नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर, आई थिंक द सेलिब्रेशंस हैव बीन वंडरफुल टू वॉच. एंड दे आर taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings, and this experience will be very handy for them, for the future generation within Netherlands, to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
3: बिल्कुल, इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा, रॉड्रिक्स, तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए. इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा. यस्तिका भाटी में यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद 3 विकेट भारत के गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नज़दीक से निकलती हुई ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया. इस बीच अगली गेंद थी राजकीय, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफसाइड में और पीछे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया. कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. 164 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर. तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे। इस बीच ओवर पिच गेंद को डीडी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, पर गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया। दो रन दो गेंदों का सामना किया उन्होंने, दो रन बनाए, 165 रन भारत का स्कोर, तीन विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है। वापस गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: इट्स माय कर्स।
3: जैसे ही आपने तारीफ की, उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है। 166 रन तीन विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। ऋचा खेल रही हैं, ऋचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की, एक रन के स्कोर पर, और यस्तिका खेल रही हैं दो रन के स्कोर पर, 166 रन तीन विकेट के नुकसान पर। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसको नीचे फील्डर कैच करवाते हैं, यहीं ड्रॉप कर दिया, ये गेंद छोड़ दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मौलकबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन यस्तिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से। काफी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था, उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर आगे आ रही हैं, लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही हैं तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था, लेकिन छिटक कर कैच चला गया। इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ से सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यस्तिका का स्कोर हो गया तीन रन, और ऋचा घोष खेल रही है दो रन के स्कोर पर इस ओवर के समाप्ति पर।
1: Well, in the last over, it was not only a catch that was dropped, they also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure. And it was a very easy chance that was spilled at the cover area. I tell you, that was basic stuff. That was kid stuff indeed. And that should have been catchable at any standard. And unfortunately, she dropped it. It all happens in any form of cricket at any level. But they probably would have got back to basics in trying to run the batter at the other side. They missed both of them. It's a bit of an inexperience on the part of Netherlands side. But nevertheless, India in a very strong position. But I'm very impressed with Van der Waard come back. She had a horrendous first over. Dean Lange, she comes to in balls and will be stumped easily. Easily stumped indeed. It's Yastika, she's gone. Again, a lot of celebration in the Dutch camp. Lange gets her first wicket. She got two in the first game against Bangladesh. In India, 168 for four. And the wickets have started to fall at very, very frequent interval indeed. Nicely tossed him. And that one spinned with the arm. And was an easy stumping for the captain, Dean Lee, to complete it. And that's got the batter standard by a mile. So celebration all across. I could see the smile coming from everyone in the Dutch team. They're all enjoying every moment of this World Cup. They're enjoying every wicket of this. So it's Yastika Badia, stemmed by lead and off the merling of Dean Lange. And I won't say India in a spot of border with the fourth wicket going down, but I think, you know, the exit of Mandana, the flow of runs have been controlled to a large extent. We haven't seen, the boundaries and the sixes getting in. So we'll just give you the bowling scorecard in a while from now. We're just getting it from a scorer. But the captain is in. Lange bowled short, and that's thrashed off the back with down towards deep extra cover. Oh, it's a nasty bounce for the fielder patrolling the boundary. I think the ball hit one of those playing turf indeed and bounced on to her. And the captain is over the mark. Harmanpreet Kaur, the 50-50 winning World Cup last year. And I tell you, she's really led the team by an example. There's a lot of discipline in the side. And she's been well respected within the side as a leader. And I think she's done a great job for the team. Lange, Dean Lange, she's in the last of bowls. This is hit high, straight down the ground. One go for five, presume. No, it's gone for four indeed. And a tremendous hit indeed by Richa Ghosh. That's a penalty you play when you drop it, because she smashes that run. In fact, it's gone for six, actually. And we couldn't pick it up very cleanly yet. It's gone for six.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: Just managed to cross the boundary ropes over there. Flat indeed from Richa Ghosh, and boy, she's a very powerful lady. And when she hits them a long way. Pretty strong wrist indeed. Here's the next ball, Langley ball, short wide. She has to wait and reach for that, and a good diving stop at backward square on the offside. And that takes Richa up to 9 from 4 to the race. India 176 for 4. With 2.2 overs remaining in this game. They still managed to bowl with the least of penalty, I presume, because they had plenty of wides in this game. I saw 15 wides in this game. And brings the captain on strike, Harmanpreet Kaur. 178 matches, 4,112 runs. Amazing career indeed. First ball, she goes back, rocks off the backward, but unfortunately it goes straight to Heath Seegers at extra cover. No run. She's shown 1 from 2. Look at the run rate, 9.87, going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Harmanpreet Kaur off the backfoot cuts this one. They're running a tough single indeed. There's a chance of run out of this non-strikers end. They still complete the run. And at the end of 18 hours, it's 4 for 177.
3: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर शैफाली वर्मा आउट हुई थी दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने लेकिन विकेट भी गिरे हैं 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर और ये 19वां ओवर यानी इसके बाद भी इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा इस बीच गिराड इफियन को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन रिचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए रिचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे रिचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था इस समय रिचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह अगली गेंद थी उस गेंद को ड्राइव किया है गेंद बिल्कुल हवा में जा रहे हैं ये और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर
2: ये लगा आभा का छक्का
3: बहुत ही शानदार तरीके से जैसा हम बता ही रहे थे कि रिचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं रिचा घोष ने एक बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी एक और शानदार छक्का रिचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर और रिचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी पुल किया है उसे देखना है फील्डर नीचे नहीं लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक रन और रिचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर रिचा का स्कोर हो गया 16 रन 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वेन डी राग की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं 3 गेंदें अभी भी शेष हैं हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं अगली गेंद का सामना फुल टॉस गेंद थी ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई लेकिन तब तक हरमन और रिचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं रिचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं अगली गेंद का भारत और नीदरलैंड्स के बीच में T20 विश्व कप का यह मैच टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया राग की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसे एक गेंद को टैक किया था और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर
2: खैर ये लगा आभा का चौका।
3: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर।
1: Well, the last shot was just fantastic to watch from Harmanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for four, one bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just, I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for four, one ball to go in the 19th over. And, India should get past 200, I think. That's what everyone was looking at. Ran in the last of bowls, Fuller. That's beautifully bowled. It was a dot ball in the over. Fuller, Yorkerland ball. And Richie was trying to make some space and crush it and missed it. And a dot ball. 4 for 190 from 19. Exactly 10 is the scoring rate from India's point of view. If you just switched on your radio sets, you're drawing the car. It's one of the best form of entertainment. And India was sent in by Netherlands today. The second of the matches they're playing this World Cup. They're 190 from 19 overs and well set for a 200. I think we're not seeing a 200 score in this World Cup so far. And, we're not seeing much surprises from the Dutch women, but I tell you, they've taken this game at a different level and they're going to be a big inspiration for the future generation within Netherlands to come up. And the first game they played against Bangladesh, they played well. First ball, here is now, Zwilling Bowles gets an edge. It's going down towards deep. Third man, and run away for four. Not a great start to the last ball, to the last over. It was a thick outside edge and it flies past the fielder who is inside the circle within the 30 yards and wide of her for four. So that's what India needed. 194, five legal deliveries remaining, and good entertainment indeed provided by the Indian batters. Richa goes in 20 from 8, and Harmanpreet Singh on 8. Next ball is wide down the leg, well taken by the keeper. Beautifully done indeed. And a dot, and it's an extra delivery. Lots of wides in this game. And Zwilling, she's bowling the last over. No wicket for 27 from 3.1 overs. Bowling analysis. And I'm sure this is a match that I'm sure is going to boost the confidence of the Indian batters, particularly the bowlers, when they come and have a go at the Dutch women. This next ball short, and she hits it high, and well caught, all dropped again. She almost caught it, and I thought she was in control of that, and in the end she dropped it. I'll tell you, frustration for the Dutch team. It was, in fact, Richa, she dropped it at mid-off, and that was coming at a comfortable height. A slower ball indeed. It was a bit of an off-spinning delivery. And Harmanpreet Kaur was now in control of that and headed straight to the fielder at mid-off, and she dropped it. It was a kind of a lolly pop chant. Next ball is driven hard. See, this time she misses the ball. It's beaten her. It's beaten at mid-off, and it's gone down towards the deep mid-off ends for four. Well, they're paying a high penalty for dropping Richa Ghosh 3 or 4 overs before. Now a drop catch for Harmanpreet Singh, and the boundary results. It was a bit of a low dying dipping full toss for Harmanpreet Kaur, but still she managed to get some bat on ball and raced away for four. Zwilling, this is going to be an expensive. Next ball, makes room, hits it high. It's in the air. Anyone could catch that. Let's see if it's going to catch it or not. Oh, she takes it now. That's the end of the captain, Harmanpreet Singh. Harmanpreet Kaur. She's out for 12 from 9 deliveries. India lose wicket number 5. 199 for 5. From 19.4 overs. And, a couple of balls from now, we'll take you to the studios of Radio All India Radio for the next program, Free Hit 20. And I'll tell you, it's a very interesting program because they get a lot of callers in that and some serious anchors and experts joining for that program. So the captain is gone, out for 12 from 9, caught Richa of the bowling as willing, and two more balls remaining. So we'll just give you the figures and shortly. And, I tell you, the Dutch girls, they played the game extremely well. No shaming in losing a game of this nature to a very strong team like India. By the time we see them in the next World Cup, I'm sure it will be a very changed team indeed. And you can expect a lot from the Dutch girls. So, it's 198 for 5, 2 legal deliveries remaining in this first half of the game. And at the end of the 20th over, which is the end of the first phase of this game, we'll take you to the studios of All India Radio for the next program, Free Hit 20, and stay glued on to your radio sets. As a matter of fact, lots of entertainment. It's been a very busy month indeed. Lots of games, tennis, football, cricket, it's all happening. Zwilling, she's got figures of 1 for 31. Bowles, next one on the leg side. That's been flicked away. Wristerly, that's gone for 6. That is a sensational shot from deep. A casual flick of a wrist, and it's gone racing away down towards D-fine leg for 6. That is a magnificent shot. One of the shots of the day, I would say, by all means. The 200 is now, you know, quite a bit. It's 2:05 for 5, and it was just a casual flick, and that went going all the way down towards the deep fine leg fence. Very expensive here indeed. 2:05 for 5, one ball to go. Deep T on 6 from one delivery. Richard 20 from 8. And I'm sure Indians will be very happy with the overall scorecard and the

0: 115 run opening stand between openers Ashraf Ali and Smriti, and India posting 209 for 5, India's first 200 run score in T20 World Cups. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha. Joining me in studio as my co-host is Suhas Vedam. Our experts are former cricketers Colonel Bhup Raj Singh, Vaishali Mathur and senior sports journalist Soumitra Bose.
1: Welcome everyone.
2: Thank you.
1: Highest ever T20 World Cup score for India. Let's start with that here. We were talking about being presented with a challenge. Harman wanted a challenge. Boy, have they responded to that challenge brilliantly. 200 breached, and I think it'll do a world of good to their net run rate as well, which they're eventually looking at, and of course, the confidence. Mr. Soumitra.
2: Certainly. In fact, 209 is a par for the course. But again, I think New Zealand... Netherlands will be disappointed with the way they started, but they finished very strongly. Catches dropped, and the difference that could probably make is the 16 runs of extras that they conceded. Out of that, 14 white balls, one no ball. That means they have bowled more than 2 overs to the Indians, and the Indians capitalized in 50s by, you know, we were talking about Shiv Ali Verma. She right. did it. And of course, Smriti Mandhana's always on song. I think it's a good total for India.
1: Right, a couple of boxes ticked, especially, Colonel, when you look at India's top order. You wanted them to come back into form before the bigger South Africa assignment arrives.
3: Oh yes, Shiv Ali has played really well today. And so has Jemima for the short time she was there. She scored about 20 runs. And of course, Mandhana was flawless. We had a minor hiccup in the 16th and 17th overs where we lost 3 quick wickets. But that, I suppose, was that we wanted to go in for a big score, 200 plus, and we took some chances, and that is how we lost those 3 quick wickets.
1: Right, so no complaints there whatsoever. They had to bat that way.
3: Not at all.
0: वैशाली जब ये दोनों ओपनर्स शिफाली और स्मृति सॉन्ग पे होती हैं अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है पावर और टाइमिंग
4: जी शिफाली पावर एंड स्मृति टाइमिंग एंड सबसे अच्छी बात ये फियरलेस बैटिंग करी आज शेफाली वर्मा ने एंड ये उनके लिए बेटर है क्योंकि उनका जो बैट का स्विंग है वो साउथ अफ्रीका के लिए मैच के अगेंस्ट उनको बेटर वे में उनको कह सकते हैं कि रन रेट उनका इक्वल कर सकता है एंड उसके साथ साथ स्मृति मंदना हमेशा ही इतना फियरलेस खेलती हैं वो तो उसकी उनके बारे में क्या ही बात करें हम और उसके साथ अगर मैं जेमिमा की बात करूं तो जेमिमा ने काफ़ी फियरलेस बैटिंग करी है लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि उनको और बेटर पिच पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जो आने वाला आपका नेक्स्ट मैच है उसके लिए आपको टीम पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था आज एंड यस्तिका भाटिया एज अगर हम कंपेरिजन करें भारती की और यस्तिका की तो दोनों सिमिलर है अभी दोनों एक ही जगह पर स्टैंड कर रहे हैं एंड कोई भी खेले बट हरमनप्रीत को उनके जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूं तो लास्ट मैच और इस मैच में देखें तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग
1: राइट अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की तो दिलांगा उन्होंने 2 विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी 1 विकेट चटकाया उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल की इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए मदद जरूर है
3: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी
0: Soumitra, it's also about who they are up against. For example, Asset Mandhana, even if it's an off-spinner in front of her, is not going to be uncomfortable.
2: Absolutely. But just to add to what Colonel said, all the 5 wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? There was kind of strokes Jemmy played, you know. Richa was lucky because she was dropped on 2.
1: Right.
2: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped, we could have been in bigger trouble. It so happens that this team, opposition, is Netherlands. Imagine, can you do this?

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024

0: में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को